0: और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिष्ट में नहीं जाने का, ये उन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो।
1: बला।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

हिदायत याफ्ता है। काब बिन अशरफ ने कहा, तुम लोग उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता और अफजल हो। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की ये आयत नाजिल फरमाई, तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है कि वो जिब्बत और तागूत पर ईमान रखते हैं और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ये लोग मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता हैं। काब बिन अशरफ ये सब कुछ करके मदीना वापस आया तो यहाँ आकर सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु की औरतों के बारे में वाहियात अशार कहने शुरू किए और अपनी जुबान दराजी और बदगोई के जरिए सख्त अजियत पहुंचाई। यही हालात थे जिनसे तंग आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निमटे, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी है। इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा, इब्बाद बिन बशर, अबू नामला रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, जिनका नाम सलसकान बिन सलामा था और जो काब के रजाई भाई थे, हारिस बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू अबस रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन जबर ने अपनी खिदमात पेश की। इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर मोहम्मद बिन मुस्लिमा थे। काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में रिवायत का हासिल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काब बिन अशरफ से कौन निमटेगा क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी है, तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उठकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं हाजिर हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल कर दूं? आपने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाजत अता फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCB ke din mein.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया और प्रोग्राम जावेदा जिंदगी में एक बार फिर अली अजबद सर इरफान अली फानी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात कर रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ बुक के ऊपर और उसमें जो जितने भी रूल्स हैं जो अच्छे कुछ हमें लगते हैं रूल्स उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और सर से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मोहब्बत का एक सर रूल था उसके ऊपर आप बात कर रहे थे तो क्या कहेंगे वहीं से शुरू करें
2: जी। आप भी माशाल्लाह उम्र के उस हिस्से में और जहां पे ये जो जज्बात होते हैं ये बड़े घोड़े की तरह इंसान पे सवार होते हैं तो जो वो दूसरा उसूल है जो मोहब्बत को डिस्कस करता है वो कहता है कि ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग और यू आर लव विद के आपको अपने आप को इस तरीके से आप ट्रीट करो अपने साथ इस तरह से सलूक करो जैसे आप उससे सलूक करते हो जिससे आप मोहब्बत करते हो।
1: अच्छा
2: अब इसको समझना आपको एक मैं मिसाल से समझाता हूँ। एक बाप है उसको अपने बेटे से मोहब्बत है ठीक है। अब बेटा जो है वो बीमार हो गया और वो दवाई नहीं खा रहा, दवाई कड़वी है। बाप को भी पता है कि ये कड़वी दवाई खा के ये रोएगा लेकिन बच्चा नहीं चाहता कि मैं ये खाऊं
1: लेकिन मोहब्बत है,
2: लेकिन उसकी मोहब्बत ड्राइव कर रही है कि जब तक खाएगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। इंजेक्शन लगाने पे बच्चा रो रहा लेकिन फिर भी वो लगवाता है कि जब तक नहीं करेगा। बेशक इसको नापसंद भी है ये काम जिससे वो मोहब्बत करता है लेकिन मैंने इसलिए करना है क्योंकि इसके लिए बेहतर है। अगर इस रूल को आप अपनी जिंदगी में देखो कि हम रोज ये सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक बड़ी अच्छी है, मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए ठीक है, मुझे कम खाना चाहिए, खाने के बाद मुझे वॉक करनी चाहिए और डॉक्टर्स भी हमें बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं कि आप यार ये आप करो ये आप ना करो। लेकिन अगर हम उस तरह से अपने आप से मोहब्बत करें जैसे हम बच्चे से बाप मोहब्बत करता है या एक महबूब अपने मोहब्ब से मोहब्बत करता है तो आपने जैसे बात की थी ना कि मोहब्बत में आप सारा कुछ कुर्बान कर देते हो तो मोहब्बत में तो लोग चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, फरहाद बनकर पहाड़ों के अंदर से नहरें निकाल लेते हैं। शीरी फरहाद का वाक्या, हीर रांझा, शशि पुन्नू, सोनी महिवाल, कितनी लोक दास्तानें हैं जो मोहब्बत के अंदर जो मुशक्कत है उससे भरी हुई है। लेकिन जो आप अपने महबूब से चाहे वो बेटे की फॉर्म में है, बेटी की शक्ल में है या महबूब की शक्ल में, किसी भी शक्ल में है, जैसे आप उसके साथ ट्रीट करते हो अगर उसका आधा हिस्सा भी आप अपने आप को ट्रीट करने पे लगा दो
1: तो आपकी जिंदगी जावेदा
2: बन जाए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आपका दिल सुबह कर रहा है कि यार मैंने सोना है, सर्दी बड़ी है, वॉक पे मैंने नहीं जाना लेकिन आपको पता है कि मुझे चीज ना पसंद है सुबह उठना लेकिन है मेरे लिए बेहतर
1: उठो। लेकिन हम तो स्टूडेंट्स हो गए ऐसे करते हैं सुबह 8 बजे क्लास छोड़ देते हैं यार, हम बिस्तर में लेटे हुए हैं तो उठना नहीं है, ज़हमत नहीं करते।
2: तो ये रूल बच्चों के लिए भी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने प्रायोरिटाइज करना होता है अपनी जिंदगी को। और दूसरी बात अजवत जो हमेशा मैं कहता होता हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वो रद्द अमल होता है हमारे अपने इंतखाब का कि मेरे साथ एक चीज बुरी हुई और उस बुरी के नतीजे में मेरा रिएक्शन शो करेगा कि क्या और मेरे साथ बुरा होगा या उस बुरे में से कुछ मेरे लिए अच्छा निकल आएगा। इसके लिए एक रूल इस्तेमाल होता है वो भी एक बड़ी अच्छी किताब में लिखा हुआ था, 10-90 रूल।
1: अच्छा।
2: 10-90 और 90-10 रूल भी इसको कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो खराबी होती है ना वो सिर्फ 10% होती है, जो 90% डिस्ट्रक्शन होती है वो हमारा रद्दे अमल जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह सवेरे उठे, आप तैयार हुए, आपने यूनिवर्सिटी आना था, चाय का कप मुलाजम ने गिरा दिया आप पे या भाई ने गिरा दिया या किसी बेबी ने गिरा दिया। अब चाय का कप आप पे गिरा, अब इस कप के गिरने का जो रद्द अमल है ये डिटरमिन करेगा कि अब थोड़ी देर बाद आपके साथ क्या होने जा रहा है। अगर तो आप गुस्से में उठे, उसको भी धक्का दिया, कप को उठा के फेंका कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तुम्हें पता नहीं है, फलां फलां करके आप गए, तेजी में आपने दोबारा शर्ट चेंज की, भागे गाड़ी में और ट्रैफिक में आगे आ रहे हो, आगे से ट्रैफिक भी जैम आ रही है और आपके जहन में अभी तक वही जो 10% हुआ था वही सारा चल रहा है। आपने एक गाड़ी के अंदर गाड़ी मार दी, वो गाड़ी वाला बाहर आया, वो भी गुस्से में था कि तुमने गाड़ी क्यों मारी, आप भी गुस्से में थे, लाला लाला एक दूसरे को आपने थपड़ो थपड़ी हो गए वहां पे और अल्टीमेटली वहां से लोगों ने छुड़वाया, ना क्लास हुई, थाने में जाके बात खत्म हुई। हुआ क्या था? 10%। और बाकी जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? मेरे रद्दे अमल की वजह से। बात समझ रहे हो? अगर उसी वाकये को मेरे साथ बुरा तो हो गया जो होना था, चाहे गिर गई, गलती होगी, उसने टेंशनली तो नहीं कराई, हो गई। अब इसको मैं ठंडे दिमाग से सोचूं कि चलो गलती हो गई है, कोई बात नहीं, मैंने चेंज करूं और ठंडे दिमाग भूल जाऊं कि ये मेरे साथ हुआ है, और आप आराम से अपनी क्लास में चले जाओ, सारे मसले हल हो जाने थे। तो हमारी जो तकदीर होती है ना, जिसको हम कहते हैं ये मेरी तकदीर है, ये तकदीर बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर हमारे जो रद्दे अमल होते हैं, हमारा जो इंतखाब होता है कि मैंने ठंडे मिजाज से यहाँ पे पेश आना है या गर्म मिजाज से यहाँ पे पेश आना है, तो मेरा ठंडा दिमाग और गर्म दिमाग ये दोनों डिटरमिन करेगा कि फ्यूचर के अंदर मेरे साथ क्या होगा।
1: बिल्कुल जबरदस्त ब्रेक यहाँ पर हमें एक फिर लेनी है लिसनर्स, एक ब्रेक ऑब्स्टिकल है। ब्रेक के बाद सर से पूछूंगा कि किस तरीके से आपने एक सर ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि 10-90 रूल के बारे में सर बता रहे थे, तो उसमें देखिए अब उसमें तो फिर यही लगता है ना कि आप घर से चलता है सब कुछ, क्या आप अगर घर से टेंशन में जाओगे कहीं पे तो डेफिनेटली आप जो है वो आगे भी चीजों को उसी तरह कॉप अप करोगे। मैं इसमें पूछना चाहूंगा ब्रेक के बाद सर से कि कितना रोल प्ले करते हैं घर वाले भी आपकी टेंशन और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन बनाने में। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, आप सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: कंपैरिजन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं ऐसा तो दूसरा ऐसा, वहां से फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट को देख के आपने देखा कि उसकी जॉब हो गई और आप अभी जॉबलेस हो, मसला बन गया। कंपैरिजन जब भी आएगा प्रॉब्लम होगी। इसके ऊपर जो रूल है वो बड़ा मजे का, उसने कहा कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे।
1: ओके,
0: अपने आप को अपने माजी से कंपेयर करो, अपने हाल को अपने माजी से कंपेयर करो। अगर तो तुम्हारा हाल तुम्हारे माजी से अच्छा है तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपकी नशो नुमा हो रही है, आप कामयाबी के रास्ते पर हो। उन लोगों से कंपेयर मत करो जो आज जिस जगह पे मौजूद हैं। आपको नहीं पता कि वो यहाँ तक पहुंचने में उन्होंने कितनी मुसाफतें तय की हैं और किन किन
1: जनरेशंस ने, उनसे पहले लोगों ने,
0: यस, कि क्या वो किस तरह यहाँ तक पहुंचे हैं। लिहाजा कंपेरिजन के जो मसाइल हैं इससे अगर इंसान निकल आए, इंसान बॉदर ना करे कि मैंने ये पहन रखा है, दूसरे ने ये पहन रखा है, और अगर दूसरे का अच्छा पहनावा आपके दरमियाने से पहनावे की वजह से आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है। कि लोग अगर आपकी चीज़ को अप्रिशिएट कर दें तो ठीक, अगर डेप्रिशिएट कर दें तो आप प्रॉब्लम में आ गए। तो आपका कंपेरिजन अपने आप से होना चाहिए। कल आप मैट्रिक में थे, आज आपने ग्रेजुएशन कर ली, कल आप जो थे कुछ नहीं कमा रहे थे, आज आप कुछ कमा रहे हैं, कल आपके अंदर कुछ बुरी आदतें थी, आज आप उन बुरी आदतों से निकल चुके हैं। ये जो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखते हैं वो भी क्या होती है, हम बुनियादी तौर पर कंपेयर कर रहे होते हैं कि इस नए साल में मैं ऐसा कुछ करूंगा जो मैं पिछले साल नहीं कर पाया, लेकिन वो रेजोल्यूशन फिर हमें अगले साल ही जाके याद आती है। वो कहता है कि यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है, इस तरह का चक्कर बन जाता है।
1: यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। बड़ी जबरदस्त बात की है। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ki duniya.
1: लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया प्रोग्राम जावद जिंदगी में अली अजबत फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सर मुझे अब आप ये बताइए कि आपने इनफरादी सतह पर तो रूल्स को डिस्कस किया है, लाइफ से रिलेटेड आपने रूल्स बताए हैं, लेकिन एक फैमिली लाइफ भी होती है, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें।
2: मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक इंसान की जो इनफरादी शख्सियत में निखार लाने के लिए तो हमने बात कर ली, एक इंसान की सोशल लाइफ भी है जिसमें फैमिली आती है, फ्रेंड्स होते हैं और दीगर लोग होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो उसके लिए उसने क्या कहा है। एक फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में रूल मुझे बड़ा इसका अच्छा लगा जो कि वालिदैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो जो हमारे लिसनर्स जो के पेरेंट्स हैं इस वक्त, जब हम एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो हम ज्यादा अच्छा एलाबोरेट कर सकेंगे, लेकिन जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त और जो वालिदैन हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रूल है, वो ये कहता है कि डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। कि वो चीजें, हर इंसान को जिंदगी में कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और कुछ बातों से वो बड़ी नफरत करता है, मतलब कुछ एक्शन आपको दूसरे लोगों को बहुत बुरे लगते हैं और कुछ एक्शन आपको तस्कीन देते हैं। वो कहता है कि अपने बच्चे को कोई भी ऐसा अमल ना करने दो जिस अमल से आप नफरत करते हैं।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो एक्शन, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे एक्शन से नफरत करते हैं, तो जब वो एक्शन आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा होगा तो आपको जो नफरत थी वो तो उस अमल से थी, तो वो अमल से जो नफरत है वो अल्टीमेटली बच्चे की नफरत में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है।
1: यानी आपको अपने फैमिली मेंबर से भी नफरत हो सकती है
2: और बच्चे से भी इवन हो सकती है। लिहाजा ये चाहिए आपको कि उन तमाम, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग स्लेट की तरह होता है, जो आप उस स्लेट पे लिख दोगे और वो लाइफ टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा वो बन जाता है। लिहाजा अपने बच्चों से शुरू में ही राइट एंड रॉन्ग के जो कॉन्सेप्ट्स आप देना चाह रहे हो, एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल आपको चीख के बोलने वाले बड़े बुरे लगते हैं जो शाउट करते हैं बोलते हुए, और आपका बच्चा शाउट करता है, चीखता है, तो आप, क्योंकि आपको नफरत है इस अमल से, चीखने वाले लोग आपको पसंद नहीं है, लिहाजा उसको आपने बड़े प्यार से समझाना है कि बेटा जो चीखना होता है, इंसान चीखते नहीं होते, उनको इस तरीके से आप समझाओ बच्चा बन के, क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि हम बच्चों के ऊपर अपनी एमए की डिग्री को अप्लाई कर रहे होते हैं। हमें बच्चे की मजबूरियों को समझ के, बच्चे की उम्र में जाकर, बच्चे के मुतालबों को समझ के तोतली जुबान में भी बात करना पड़े तो हमें करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना इलम एक छोटे से बच्चे के ऊपर झाड़ रहे हों। जी
1: सर, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है, हम अक्सर घरों में देखते हैं और मैंने ऐसा देखा भी कि हम एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसमें हम एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, अभी छोटी सी है लेकिन वो बड़ी बन सकती है, हम बच्चों के सामने फैमिली मैटर्स बड़े डिस्कस करते हैं। उनके सामने हम फैमिली पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, हालांकि जो बड़ों के मामला हैं हम उनको बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या समझते हैं इसके बारे में?
2: देखो, इसमें ना मशरक और मगरब में जमीन आसमान का फर्क है। एक जो हमारी मशरकी दुनिया है, जो हमारा मशरक की दुनिया पाकिस्तान, इंडिया या मशरकी ममालिक, और एक मगरबी ममालिक है। मगरब के अंदर आप देखोगे, जब आप उनकी मूवीज देखते हो या उनके ड्रामास वगैरह देखते हो, तो कभी भी बच्चे के सामने अगर पुलिस वाला भी घर आ गया और उसने देखा कि बच्चा बैठा हुआ है साथ वालिदैन के, तो वो ये भी बेशक जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल लोग
1: है ना,
2: यस, तो वो कहेगा जी बच्चे को आप साइड पे कर दे, हमने आपसे कोई, बल्कि पहली बात तो ये है कि पुलिस वाला बच्चे के सामने आएगा ही नहीं, इतने वहाँ पे वो एथिक्स स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्ट मसले हैं, खाला बैठी हुई है, चाचा बैठा हुआ है, चाची मामा सारे फैमिली, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, छोटे बच्चे भी साथ ही खाना खा रहे हैं, वहाँ पे अब फलां चाचे की चुगली हो रही है, फलां मामे की चुगली हो रही है, ठीक है, फलां भाई का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अब बच्चे जिसने अभी मोहब्बत तकसीम करनी है, मोहब्बत रिसीव करनी है, उसी चाचे से मोहब्बत रिसीव करनी है जिसका आप वहाँ पे बैठ के चुगली कर रहे हो या गिबत कर रहे हो, उसी मामे के पास उसने जाना है जिसके साथ आप इस तरीके से लिंक कर रहे हो। यहाँ पे फिर बच्चा जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है, जिसको डेजोनेंस कहते हैं, कि उसका एक बिलीफ है, बिलीफ ये है कि ये मेरा वेलविशर है, ये जो मेरा मामा है या जो मेरा चाचा है या जो भाई है या कोई भी जो दूसरा है, लेकिन वालिदैन मेरे उसको इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि वो अच्छा बंदा नहीं है, तो वहीं से वो जो बच्चे के दिल के अंदर अभी दूसरों के लिए मोहब्बत आनी चाहिए थी, वहां पे आप नफरत का बीज बो देते हो, और वो जो नफरत होती है वो अल्टीमेटली बच्चे को बचपन के अंदर ही ऐसा बना देती है कि वो फिर दोस्तों में जब बैठेगा तो उसको भी ये जो चुगली करने की आदत है, गीबत करने की आदत है, अगर मेरे पास बैठा तो मेरी तारीफ करेगा, जैसे मैं साइड पे हो जाऊंगा तो फिर मैं मौजूद बहस बन जाऊंगा। अच्छा, मैंने ऐसे भी महफिलें देखी है कि बाजुकात जो चार दोस्त मिलके किसी पांचवे की गीबत कर रहे होते हैं ना, तो जब उनमें से एक उठ के चला जाता है चार में से, तो तीन उसकी गीबत शुरू कर देते हैं। ये बात हमेशा अजबद आप याद रखो, जो आपके मुंह पे किसी और की गीबत कर रहा है वो किसी उसके मुंह पे आपकी भी गीबत करता होगा।
1: और ये पक्की बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सर ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात बताई है जो हमारी सोसाइटी में बार बार इम्प्लीमेंट हो रही है, और ये बड़ी एक गलत बात है, इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। तो अब एक और हमें ब्रेक लेना है, यहाँ पे एक और ऑब्स्टिकल है, और बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हमारी जो गुफ्तगू है वो सम अप हो रही है। और आप सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया, वी विल बी राइट बैक।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। प्रोग्राम जावेदा जिंदगी में एक बार फिर अली अजबत आपकी खिदमत में हाजिर है। सर इरफान अली फानी साहब बहुत ही अच्छे मूड में हैं आज और बड़ी अच्छे हमें रूल्स के बारे में बता रहे हैं। लाइफ 12 रूल्स ऑफ लाइफ जो बुक है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सर अब मुझे बताएं कि लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का, तो उसमें हम कोई एक ऐसा डिफरेंट सा और फुल ऑफ टेस्ट एक ऐसा बताएं रूल कि जो लिसनर्स को बहुत पसंद आए।
2: अच्छा, इसमें मैं बात करूंगा कि अभी तक जो हमने बात की है ना, वो बात की है हमारी सोशल लाइफ की।
1: okay.
2: हम इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल से फैमिली है, फैमिली के साथ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ हमारा दीगर इंसानों के साथ रिश्ता है। अब सोसाइटी से जरा हट के एक चीज है फितरत, एक नेचर। नेचर की जब मैं बात करता हूँ उसका मतलब क्या है कि टिमटिमाते हुए सितारे हैं,
1: क्या बात,
2: लहलहाते हुए खेत हैं,
1: वाह वाह,
2: सनसनाती हुई हवाएं हैं,
1: वाह,
2: ठीक है, रिमझिम करते हुए पानी के झरने हैं,
1: एग्जैक्टली,
2: अच्छा, सुबह सवेर होती है और दरख्तों के ऊपर चहचहाती हुई जो चिड़ियां हैं उनकी आवाजें हैं, ठीक है, और बुलबुलों की आवाजें आ रही हैं,
1: क्या बात,
2: अच्छा, अब ये एक और दुनिया है। इंसान ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है अपनी मटेरियल लाइफ के अंदर,
1: दूर हो गया,
2: अपने कंट्रोवर्सीज के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर, कि उसके पास वक्त नहीं है कि वो जो अल्लाह ताला ने जिसकी प्रोडक्ट है इंसान, फितरत की प्रोडक्ट है ना इंसान, ठीक है, जिसकी फितरत की प्रोडक्ट है उसको देखने का इसके पास वक्त नहीं है, उससे लुत्फ उठाने का वक्त नहीं है, उसको देखकर अप्रिशिएट करने का इसके पास वक्त नहीं है। वो अगर एक खूबसूरत डूबते हुए सूरज का नजारा भी कर रहा है तो उस वक्त भी वो किसी ऐसे ख्याल में पहुंचा हुआ है जो या तो किसी साजिश किसी के खिलाफ दिमाग सोच रहा होगा या किसी की कही हुई बात के ऊपर पशिमान होगा कि आज उसने मेरे साथ जो बात की है बड़ी गलत की है। इसके ऊपर जो इसका एक रूल है ना, इस सेगमेंट में हम वो डिस्कस करेंगे।
1: okay.
2: वो ये कहता है, पेट अ कैट व्हेन यू इनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट, कि अगर गली में जाते हुए अगर कोई बिल्ली चलते चलते आपके पैरों के आगे पीछे मूव करती है, हरकत करती है
1: बिल्कुल,
2: तो उसको पकड़ो,
1: प्यार करो,
2: उसको पकड़ के प्यार करो,
1: पेट करो।
2: ये आपकी जो दूसरी जिंदगी है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप किसी पार्क में बैठे हुए हो और आपके गिर्द कबूतरों का एक जो झुरमट है वो भी आके बैठा हुआ है, आप उनके साथ खेलो। नदी के किनारे पे आप बैठे हुए हो, पानी के अंदर आप पत्थर फेंक रहे हो और पत्थर की जो पानी में पड़ने वाले पत्थर की आवाज जो है उस आवाज से आप लुत्फ उठाओ।
1: सर अक्सर जब बारिश हो जाती थी तो ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाना, हमने उसमें पत्थर फेंकने।
2: यस, अब आप देखो कायनात की हर चीज में मौसीकियत है, हवाओं की सरसराहट में भी मौसीकियत है। अभी खिजां का मौसम है, जब अब सुबह आ रहे होते हैं ना तो कैनाल रोड के ऊपर जो हवाएं जब ठंडी चलती हैं तो पत्ते जो हैं वो जिस तरह से रोड पे गिरते हैं और कुछ पत्ते हमारी गाड़ी के पहियों के नीचे आकर भी जब तड़तड़ाहट की आवाज देते हैं, अब ये वो चीजें हैं,
1: वॉक करते हुए
2: ये वो चीजें हैं जो महसूस करने वाली हैं, ये वो चीजें हैं जो रियल में इंसान को जिंदगी को जावेदा करती हैं। ये फितरत की कुर्बत है कि रात को जब आप चमकता हुआ चांद देखते हो तो एक वक्त आप उसको देखते रहते हो और आप उसको देखते हुए उस कुदरत की भी आप तौसीफ कर रहे होते हो। जब भी आप किसी तखलीक को देखते हो ना और तखलीक को देख के आप ठहर जाते हो तो वो ठहरना इस बात की दलील होता है कि आप उसके खालिक की तारीफ कर रहे हैं। कोई बच्चा खेल रहा हो ना और उसका वालिद कहीं दूर बैठा हो और गली में जाता हुआ शख्स खड़ा होकर उसके बच्चे को देखना और हंसना शुरू कर दे तो दूर बैठा हुआ बाप इस बात पे खुश हो जाए कि वो मेरे बेटे को देख के हंस रहा है।
1: बिल्कुल,
2: वो खालिक था, ये उसकी तखलीक थी जो बच्चा है। ऐसी जो कायनात की फितरत,
1: क्या बात,
2: ये मेरे खालिक की तखलीक है। जाते हुए जब हम किसी भी फितरत के खूबसूरत मजाहर को देखते हुए या मजहर को देखते हुए हम खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं, یا اس کو ہم خوش دلی سے یا خوش اسلوبی کے ساتھ ویلکم کہتے ہیں جاتے ہیں تو ہمارے وہ ایکسپریشن اس خالق تک بھی جاتے ہیں جس نے اس کو خلق کیا ہوتا ہے. لہذا زندگی کے اندر یہ جو ہماری معاشرت کے نظام سے ایک بالکل ہٹ کے جو نظام ہے وہ فطرت کا نظام ہے. بہت ضرورت ہے زندگی کو جاودان بنانے کے لیے کہ ہم اپنے روز مرہ کے سرکل سے نکلیں. رات کو آپ کوئی 15 منٹ کے لیے ایسی جگہ پہ واک کریں جہاں پہ تنہائی ہوتی ہے, جہاں پہ شور شرابہ نہیں ہوتا ہے, تو اس خاموشی کی باتیں آپ سنیں. خاموشی بھی بولتی ہے, خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. تخلیق ہمیشہ تب ہوتی ہے جب اندھیرے میں روشنیاں خیالوں میں آ جائیں اور جو ان بولی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کو سنائی دینا شروع ہو جائیں. کہ کسی نے وہ بات بولی نہیں لیکن آپ وہ سن رہے ہیں. اس کو سن کے شاعر شاعری کی زبان میں لکھ دیتا ہے, افسانہ نگار افسانے کی زبان میں لکھ دیتا ہے, ڈرامہ نگار ڈرامے کی زبان میں لکھ دیتا ہے, غزل گو غزل کہہ دیتا ہے, نغمہ لکھنے والا نغمہ بول دیتا ہے. لہذا فطرت جو ہے, تخلیق, فنون لطیفہ, جمالیات, یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ فطرت سے ہے. تو فنون لطیفہ کے اندر ہی انسان کی زندگی ہوتی ہے. تو میں اپنے تمام سامعین کو یہ کہوں گا
1: جی,
2: ہم بہت بیزی ہیں, ہماری مادی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں, ہماری معاشرتی ضرورتیں بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ہماری کچھ فطری ضرورتیں بھی ہیں, ان کا بھی خیال کریں. فطرت کو دیکھیں, فطرت آپ کو بھی اپریشیٹ کرے گی. اگر آپ فطرت کو اپریشیٹ کریں گے تو فطرت کو بنانے والا جو ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا.
1: بالکل, ویری ویل سمڈ اپ, بہت خوبصورت اور ڈیپ گفتگو کی سر نے آج. تو لسنرز, جیسا کہ سر نے بتایا, آپ اللہ کی نیچر کو جو ہے محسوس کریں, اس کو فیل کریں. اس میں بھی ایک, اگر آپ خاموشی میں بھی کہیں جاتے ہیں تو ایک جس طرح سر نے بتایا, خاموشی بھی بولتی ہے. بڑا زبردست سینٹینس تھا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی نیچر کو جتنے تعریف کریں گے آپ, اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ ایک آپ کے اندر ایک پازیٹیویٹی اور ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اجاگر ہوگی. اور اسی طرح جو ہے ہم ایک, آج ہم نے کوشش کی تھی کہ آج آپ کو ڈفرینٹ تھوڑا سا موضوع اس کے اوپر ڈسکس کریں, تو ہم نے جو ہے اپنی پوری کوشش کی. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا شو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور ہماری باتیں آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی. اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم نیکسٹ شو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.
3: جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया कैम किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ इधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं जो भी होते तो हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपए कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे बब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज़ के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेदाद और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुरअज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मुशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: दादा, वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए, मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: न्यूज़। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
2: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
2: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए,
2: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
2: UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
3: In sadaye Lahore ast. In sadaye UCP ast. Lotfan goosh bedahid. FM 92.6 jahane UCP.

मौसीकी के सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा का

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: एक नई सोच, नई
1: सोच, एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1,
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया
2: back in your seat.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच, नई
0: सोच, एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
0: UCP No. 1, जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.